0: ये आकाशवाणी है। आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं सुमित सिंह पदम द्वारा सितार वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू सितार रिसाइटल बाय सुमित सिंह पदम।
0: सुमित को संगीत के प्रति प्रेम और निपुणता अपनी तीन पीढ़ियों पुरानी परिवार

0: एक परंपरा से विरासत में मिली है। आकाशवाणी के ग्रेडेड कलाकार उनके दादा श्री सोहन सिंह पदम एक उत्कृष्ट संगीतकार होने के साथ साथ तंतु वाद्य यंत्रों के सिद्धस्थ कारीगर भी थे। उनके पिता श्री जसवीर सिंह पदम जो सितार और तबला वादन के दिग्गज हैं, उनके प्रथम गुरु बने।
1: Along with learning from his father, Sumit is learning sitar under Guru Shishya Parampara from Pandit Dr. Harvinder Kumar Sharma, a top grid artist of Akashwani and an acclaimed sitarist, carrying the generations old legacy of his guru, Ustad Vilayat Khan Sahib of Imdad Khani Gharana.
0: Akashwani ke a grid kalakar Sumit लंबे समय से भारतीय शास्त्रीय संगीत का जादू बिखेर रहे हैं और देश भर के प्रमुख संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुतियों के कारण उन्हें काफी प्रसिद्धि भी मिली है।
1: He also has numerous awards and achievements added to his name, which include संगीत रतन सम्मान, कला निधि सम्मान, स्वर साधक सम्मान एंड राष्ट्रीय कला गौरव सम्मान।
0: आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में सुमित सिंह पदम के साथ तबले पर संगत कर रहे हैं मधुरेश भट्ट। बनारस घराने से ताल्लुक रखने वाले मधुरेश भट्ट वर्तमान पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी तबला वादकों में से एक हैं। वे अपने पिता स्वर्गीय श्री सुरेंद्र भट्ट के शिष्य हैं।
1: He possesses special abilities in fusion, jugalbandi and taal kachehri. His performances as a solo artist and as an accompanist has won admiration, appreciation and respect from the classical music world. An A-grade artist of All India Radio, he is a member of ICCR's reference panel of artists.
0: Aaj ke karyakram mein Sumit Singh Padam apne vadan ki shuruaat राग रागेश्वरी से कर रहे हैं, जिसमें आलाप जोड़ आलाप और जोड़ झाला के बाद विलंबत गत तीन ताल में, मध्य लय गत मत ताल में और अंत में तीन ताल में द्रुत गत पेश की जाएगी।
1: इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट सुमित सिंह पदम बिगिन्स हिज रिसाइटल विद राग रागेश्वरी, wherein alap is followed by jod alap, jod jhala, and then vilambit gat in teen taal, madhyalaya gat in mat taal, and drut gat is in teen taal.

0: हम अब प्रस्तुत करेंगे राग तेज। आलाप के बाद तीन ताल में मध्य, लय और द्रुतगत प्रस्तुत की जाएगी।
1: That was राग रागेश्वरी। सुमित सिंह पदम विल नाउ प्रेजेंट राग देस। आलाप इज फॉलोड बाय मध्य लय गत एंड द्रुतगत इन तीन ताल।

0: यह था सुमित सिंह पदम द्वारा प्रस्तुत राग देस। तबले पर उनके साथ संगत की थी श्री मधुरेश भट्ट ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जालंधर की प्रस्तुति थी।
1: That was राग देस presented by सुमित सिंह पदम। He was accompanied on tabla by मधुरेश भट्ट। This program was a presentation of Akashvani Jalandhar.